स्वाम एकानाम एकाम महिमकायलाम तवाते ओवे हितम लय नावास्पाचित येस्य।